0: सोलू एफ एम 101.2 MHz उज्ज्वल भविष्य को लागी हाम्रो अभियान
1: साथमा
2: स्टार डिजिटल कलर ल्याब तथा ज्वालामाई अफसेट प्रेस सोलु दुर्गुण्ड नगरपालिका 5 सोलु

0: podcast istriunku, IPTV sudah dibangun, dishabung internet, Nepalku, ikmatra, next generation, Wi-Fi 6, terdiri bahanku, Wi-Fi 6, bantarung sangga utkrishti jalan dibangun, dishabung internet, sampai internet TV, the only sebuah nusajilah berusung gane, interoperability, self-care app, my dishabung app. दाँतको सामान्य उपचारदेखि जटिल दन्त उपचारसम्म अब एउटै विश्वासिलो गन्तव्य ब्रह्मदेन्ट नेपाल हेयर ट्रान्सप्लान्ट स्किन एन्ड एस्थेटिक डेन्टल क्लिनिक एन्ड इम्प्लान्ट सेन्टर
1: ब्रह्मदेन्टमा उपलब्ध छ सम्पूर्ण दन्त उपचार सेवा नियमित दाँत जाँच स्केलिङ तथा पोलिसिङ फिलिङ रुट क्यानल दाँत निकाल्ने डेन्टल इम्प्लान्टदेखि आकर्षक मुस्कानका लागि आवश्यक सम्पूर्ण उपचार अनुभवी दन्त चिकित्सक
0: दाँत सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारीका लागि आज सम्पर्क गर्नुहोस्
1: ब्रह्मदेन्ट नेपाल हेयर ट्रान्सप्लान्ट स्किन एन्ड एस्थेटिक डेन्टल क्लिनिक एन्ड इम्प्लान्ट सेन्टर पाटन हस्पिटल रोड नगनखेल सम्पर्क 01-5454-666 वाट्सएप 98-65-44-96

0: వర్షం పూట కానీ గారు కళ్యాణ్ పరిచయం కాదు అప్పుడు గారు మీరు సుజన్ గారు మొసయ్య యాజ్ డెప్యూటీ మేనేజర్ కామ్ గారి అయితే టాటాకు
1: కే గాడీహరు
0: కస్తు
1: ఖర్చు గాడీహరు
0: బిగ్రియో ఎక్స్పోమా యు ఎక్స్పోమా హామీ దుయోడా నయా ప్రొడక్ట్ హరు లేరా సో పాన్ సీవీ రోచి ఆగోయిది దుయోడా ప్రొడక్ట్ హరు
1: ఇస్ పాన్ సీవీ విశేషత కో బారే మా ప్రకారి గారు
0: అబ విశేషత వందా కే చియాగో ఈవీ కో భన్ను పోతా కేరి సై యు సై హంగ్రో వైలి అప్గ్రేడెడ్ వేరియంట్ ఆయగో డిజైనర్ హెరూ చెల్లి అజ పైలా భా బెటర్ డిజైనర్ మా ఆ హెడ్లాంప్స్ చేంజ్ బంపర్ డిజైనర్ చేంజ్ సేఫ్టీ కో లాగి అఫ్ ద బెస్ట్ రేటెడ్ కార్స్ ఛౌడా ఇయర్ బ్యాగ్ ఈఎస్పీ కంట్రోల్స్ యూ కారణ 360 డిగ్రీ క్యామెరా అప్గ్రేడ్ కరే సో ద ప్రైస్ హామీ పురానే ప్రైస్ దిరా 2899 ద 2999 దుయ్యా ప్రైస్ మా దిరా అబ అని ఇంటీరియర్ మా ఫినిషింగ్ ఫిట్ అండ్ ఫినిషింగ్ మా అజ పురాణ భా అజ ఇంప్రూవ్ స ప్లస్ స్కూల్కు సైజ్ 26.03 సెంటీమీటర్ కొన్ని కూరలో అప్గ్రేడ్ కరే పంచమా హామీసంగ యూ అప్గ్రేడ్ వేరియంట్ తోసమా హెన్న పంచమా హామీ పురాణ భా బ్యాటరీ క్యాపాసిటీ బాగా 35-40 కిలో వాట్ అని పడి హజు క్లియరెన్స్ 190-195 మోటర్ క్యాపాసిటీ 90-95 కిలో వాట్ అయి కూడా ప్రైస్ బాగా ఫీచర్స్ బాగా ప్రైస్ హామీ పురాణ భాగా కమ్ ప్రైస్ లంచ్ కరాయి హామీ స్మార్ట్ 32 వేరే ఆ హజుకు 32 గుణ హజార పైరు భాష పడి అర్క ఆమెసంగ 40 కిలో వాట్ ఇంపావర్ వేరే ఆసో 36 గుణ ఇంపావర్ సన్రూఫ్ భాగ ఇంపావర్డ్ ఎస్ హజుకు 36 గుణ హజార హామీ పురాణ ప్రైస్ భాగా కమ్ ప్రైస్ లంచ్ కరాయి అజ బడీ ఫీచర్స్ అది గ్రాహకు సంబంధ బడీ రోజాయి అథవా ఆకర్షణ కొన్ గాడీమా దేఖ హామీ హిసాబ హేరి దుజై గాడీ ఎక్కడ చాయకు హామీ అయితే సమన్నా రాము బుకింగ్స్ భయో బిక్రీ రాదు పంచ్ హెరీ 15,000 మాధి చియాగో హెరీ లగు 3,000 భా మాధి ఇది చాయి పచిల్ సమయ ఇంధన గాడీ విద్యుత్ గాడీ ఈవీ దుదే మాధ ప్రతిస్పర్ధ విద్యుత్ గాడీ ధరే అగడి ఆయో భన్ను గ్రాహకు బడీ చాసో టాటాలు కే భర ఇంధన గాడీ ఈవీ నై విద్యుత్ గాడీ నే బిజులీ గాడీ నే ఓవరాల్ నేపాల్ పెనిట్రేషన్ ఈవీ నే బడీ ధన్యవాద అయితే హామీ నైమా ఎక్స్పో 2026 అంతర్గత టొయోటా కంపెనీ స్టల్ మా ఆగా హామీసంగ యాజన కర్మచారి సర్వపరిచయ మేము సురు నమస్తే మేరు మహేంద్ర శ్రేష్ టొయోటా నేపాల్ సీనియర్ మేనేజర్ సేల్స్ అని కే టొయోటా కంపెనీ గాడీ బుజన గ్రాహక అవస్థ కతి ఆయన హామీ దుయటా మోడల్ నయా ఫరక మోడల్ లంచ్ ర్యాపో హైబ్రిడ్ జల్ అబ దుమ టెక్నోలజీ హిసాబే హైబ్రిడ్ ఎక్కువ రామ్రో మాని బ్యాటరీ ప్లస్ ఫిల్ దుయటే చల్ని గాడీ దుయటే మిక్స్ బాగా ఎక్కువ ఫరక టైప్ మోడల్ ధరే ఫీచర్స్ గాడీ లేకపోతే అయితే గ్రాహకలే రుచాయక అర్క మోడల్ హైలెస్ పికప్ ఝండై ఝండే 17-18 వర్ష పది నయా లుక్స్ ఫరక తరికా అలికతి రామ్రో ఖాళ హైలెస్ ఆగ కస్టమర్ ధరే చాహనా ఎస్టో ఖాళ లుక్స్ హైలెస్ ఆయేదీ యర నేపాలే కింతే భీ ధరే జానా అబ హైలెస్ అలికతి 250 సిరీజ్ జో ట్రాడో జో లుక్స్ భిత్రీ ఇంటీరియర్ ఆగే ధరే రోజాయమా పడక
1: అవ టొయోటా కంపెనీ విశేష అలికతి లగ్జరియస్ ఆమ్ మానసే ఎఫోర్డ్ గుణా అలికి మహంగో ఖాళ భన్ని ఖాళ హామీ బుజాయి ఆమ్ మానసరూ సమగ్ర రూప సామాన్య మానసు కే బ్యాంకింగ్ ప్రోసెస్ అథవా గాడీ లిన చాయమ గ్రాహకు
0: అయితే అబ గాడీ మహంగై హోన అబ ఫ్యూల్ కార్లా ఎత్తికే అలికతి ట్యాక్స్ ధరే నై మహంగై ఉంటా అబ టొయోటా అలికతి రిలాయబిలిటీ హాలే అలికతి చల్న సగ్నిలే కిన్నే హోన నసగ్నిలే అలికతి ఆఫ్నో బిజినెస్ వ్యాపార బడాయి పురాణే భయ లిన్ సెకండ్ హ్యాండ్ లియో బలి రేంజ్ నయా లిన్ నసకే
1: अहिले अब ब्याङ्क फाइनेन्सको हिसाबले पनि अहिले इन्ट्रेस्ट रेट एकदमै कम छ, यहीँ पनि ग्लोबल आइएमई आएको छ जसले चाहिँ 5.5 माथिको रेन्जमा दिएको छ, र डाउन पेमेन्ट पनि अब कम्पनी हुनेलाई चाहिँ 20% डाउन पेमेन्ट गरेर लाने सुविधा पनि छ, त्यो भएको हुनाले चाहिँ अब राम्रै छ भनौँ न अहिले फाइनेन्सियल हिसाबले चाहिँ ब्याङ्कहरूलाई। अब अघिल्लो वर्षको भन्दा यस वर्ष नाइमा अब विशेष गरी त्वचामा चाहिँ अलिकति फरक ग्राहकले अनुभव गर्ने कुराहरू अरू के छ गाडीहरूको सन्दर्भमा?
2: एउटा चाहिँ हाम्रो चाहिँ टेक्नोलोजी सम्बन्धी चाहिँ हाइब्रिडको टेक्नोलोजी सम्बन्धी चाहिँ अलिकति फरक पाउनुहुन्छ, र अब विश्वमै एडप्ट गरेको हाइब्रिड टेक्नोलोजी नेपालले पनि त्यो चाहिँ टेक्नोलोजी बुझोस् जानोस् र केही बारेमा सोध्नु पर्यो कस्तो हाइब्रिड भनेर सोध्नु पर्यो भनेदेखि हाम्रो स्टलमा आएर भिजिट गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ। र अर्को भनेको बलियोको लागि चाहिँ टोयोटा हाइलक्स भनेर चिनेको चिज चाहिँ अब हामीले यहाँनिर कति वर्षदेखि कस्तो खालको टोयोटा हाइलक्सहरू आइरहेछ भनेर चाहिँ हामीले यहाँ डिस्प्ले पनि गरेका छौँ, र कस्तो खालको पिकअपहरू चाहिँ आएको थियो भनेर, यो चाहिँ धेरै युज हुने नेपाल जस्तो बाटोलाई भएको हुनाले चाहिँ यो पनि आएर कस्तो खालको छ टेक्नोलोजी के छ भनेर बुझ्न सकिन्छ।
1: हस्, यहाँलाई धन्यवाद कुराकानीको लागि।
2: हस् धन्यवाद।
1: मैले यति बेला निशान कम्पनीको स्टलमा आइपुगेको छु, निशान गाडीको हामीसँग एकजना हुनुहुन्छ, उहाँ यहाँको परिचय छ।
3: म अमिता जोशी हो।
1: अमिताजी, यसबाट के छ निशानको विशेष कस्तो किसिमका गाडीहरू चाहिँ रेट अवस्था छ, कुन कुन नयाँ लन्चहरू भयो
3: निशानको स्टलमा? अहिले हामीसँग अभाइलेबल भनेको म्यान नाइट र लेक्सन हो, होइन? हजुर, यता नयाँमा देख्नु नै भयो होला, यो पालिको नयाँमा हाम्रो लन्चिङ भनेको चाहिँ हामीले न्यू टेक्ट्रोनको चाहिँ हामीले लन्च गरेका हो। यो चाहिँ अलमोस्ट हजुरको लुक्सलाई चाहिँ हाम्रो मिनी पेट्रोल जस्तै नै देखिन्छ। त्यसको विशेषता भनेको अब जापानिज टेक्नोलोजी हो। अब हामीले यो पालि लन्च गरेको भनेको चाहिँ यो चाहिँ अब जो मान्छेहरू जति पनि हाम्रो ग्राहकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ अब इलेक्ट्रिक कति कस्टमर्सहरू अझै पनि हुन्छ कि हामी इभी गाडीहरू चाहिँ चल्दैनौँ, हामी चाहिँ अरू राम्रै बरु पेट्रोलमै चल्छौँ होइन भन्ने उहाँहरू कस्टमरहरूको लागि चाहिँ भनेर हामी स्पेसली यो टेक्टोन चाहिँ लन्च
1: गर्यो। हामीसँग निशानमा भएको गाडीहरू र यसको मूल्यको हिसाबमा अलिकति कुरा गरौँ, कति कति
3: प्राइसिङको कुरा गर्नुहुन्छ भने चाहिँ निशान त एकदमै अब पहिला जस्तो होइन, एकदम महँगो छ। निशान ब्रान्ड भन्ने बित्तिकै जापानिज ब्रान्ड हो, एकदमै महँगो छ भन्ने कुरा चाहिँ अहिले एकदमै सोचेर रङ भइसकेका छ। त्यसले हामीसँग जति पनि निशानको गाडीहरू छ स्टार्टिङ प्राइसहरूको 75,000-75,000 नै सुरुवाती प्राइस छ भने टेक्टनको सुरुवाती प्राइस चाहिँ हामीले 51,30,000 नै त्यो नाइमा मात्रै लन्चिङ गरेर
1: ग्राहकहरूको चाहिँ विशेष हो चाहिँ कस्ता किसिमका गाडीहरूमा छ निशानको पनि?
3: निशानमा चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ भन्नु पर्दा हजुरको एकदमै भनौँ न सस्तो राम्रो घर पर्दो भनौँ न, हाम्रो नर्मल सिम्पल भाषाको बुझाइमा हेर्ने हो भने ग्राहकहरूको चोइसमा चाहिँ सब राम्रो पनि अनि ब्रान्ड वाइज राम्रो सस्तो अलि लामो समयसम्म टिक्ने र उहाँहरूले चाहिँ गाडी किनिसकेपछि चाहिँ मेन्टेनेन्स पनि उहाँहरूले चाहिँ गरिराख्न सक्ने खालको चाहिँ रोजगारीमा पर्न आउँछ। हामीले चाहिँ लास्ट फ्यु इयर्सदेखि चाहिँ यो कुराहरू सबैलाई चाहिँ एकदम ध्यानमा राखेर चाहिँ मान्नलाई चाहिँ एकदम पर्फेक्ट भनौँ न, जसले चाहिँ केही गाडी नचढिकन तर राम्रो पेट्रोल नै चढ्ने हो भने चाहिँ यो मान्ना चाहिँ हाम्रो एकदमै सस्तो राम्रो भर्खर गाडी भन्छु म चाहिँ।
1: अब अन्त्यमा दैनिक कति ग्राहकहरूले अवलोकन गर्नुभएको छ स्टल हिजोदेखि सुरु भयो?
3: हिजोदेखि सुरु भएको हिसाबमा त एकदमै धेरै नै प्याक छ होइन, अलमोस्ट अब होला अब अझै पनि नर्मली अब हाम्रो भन्दा पनि इलेक्ट्रिकको स्टलहरूमा चाहिँ अझ मात्र भिड चाहिँ छ। हाम्रो कस्टमरको चोइस भनेको चाहिँ जो इलेक्ट्रिकमा नजाने जसको रोजगारी चाहिँ पेट्रोल गाडी नै हो भन्ने मात्रै फिल्टर गरेर कस्टमरहरू भिजिट गर्नु भएको छ। त्यो हिसाबले पनि हिजोको दिनमा मात्रै हामीले कुरा गर्ने हो भने लगभग 150-180 हाराहारीमा चाहिँ हाम्रो स्टलमा मात्रै भिजिट गर्नुभएको छ भने अब सायद अब इलेक्ट्रिकमा त अझ धेरै होला यो भिडको।
1: धन्यवाद। यति बेला हामी यो नाइमा मोबिलिटी एक्सपो 2026 अन्तर्गत हुन्द्री कम्पनीको स्टलमा आइपुगेका छौँ जसले विद्युतीय गाडीहरू मात्र उत्पादन र बिक्री वितरण गर्ने गर्छ। यसका एकजना प्रतिनिधि हामीसँग हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानी गर्छ। सरको परिचयबाट सुरु गरौँ।
4: मेरो नाम चाहिँ दिवस केसी, म चाहिँ बोमाई हुन्द्री कम्पनीको बोमा इभी भन्ने गाडीमा एज अ मार्केटिङ सेल्स पर्सन बसिनु।
1: पछिल्लो समय यो विद्युतीय गाडीमा आम उपभोक्ताको चासो बढ़िरहेको छ होइन, भिड पनि धेरै जसो स्टलहरू विद्युतीय बजारतिर बढी देखिन्छ के छ तपाईँको अवस्था
4: ए हाम्रो पनि अहिले राम्रै छ किनभने हजुर यो सिटी कारहरू चाहिँ हुन्छ नि फर्स्टमा सिटी कार हुनाले मान्छेलाई चाहिँ कस्तो खालको गाडीले चाहिँ हेर्दा पनि सानो सिटीको परेको छ भनेर मान्छेले आफ्नो प्रतिक्रियाहरू देखाउन चाहिँ आइरहनु भएको छ
1: यसको के छ मूल्यको हिसाबमा कतिसम्म पर्छ
4: यसको हजुरको दुईवटा भेरिन्छ 300 किलोमिटर र 200 किलोमिटर गरेर 300 किलोमिटर हजुर 26 लाख छ र 200 किलोमिटरको चाहिँ 21 लाख हुन्छ
1: एकपटकमा फुल चार्ज गर्दाखेरि कुरा गर्नु
4: मैले प्राइस कुरा
1: किलोमिटर भने चल्ने त्यति चल्ने भन्नु
4: पर्नु फुल चार्ज गर्नुभयो हजुर 300 किलोमिटरको रेन्ज पाउनुहुन्छ
1: पछिल्लो समय यो विद्युतीय गाडीहरूको जसरी विकास विस्तार देशभरि हुँदैछ होइन यो होन्डी कम्पनीले विशेष गरी यसकै कारोबार गर्दैछ अब के होला योभन्दा पछाडिको भविष्यमा यसो हेर्दाखेरि नेपालमा विद्युतीय गाडीहरू नै फस्टाउँछ अथवा चाहिँ इन्धनबाट चल्ने गाडीहरू पनि केही मात्रामा अघि बढिरहेको छ के लाग्छ
4: अब हजुरको फ्युचर हेर्दाखेरि चाहिँ इलेक्ट्रिक गाडी नै फ्युचर हुन सक्छ किनभने हजुरको अब पेट्रोलको प्रब्लम पेट्रोलको त्यो महँगाई हेरेर चाहिँ इलेक्ट्रिक चाहिँ एकदमै मान्छेलाई एकदमै सजिलो भयो कि अब हजुरले घरमै चार्ज गर्छु घरकै बत्तीले चाहिँ मजाले चार्ज गर्न मिल्यो बाहिर गए हाइवेतिर गयो त्यहाँ पनि इलेक्ट्रिक चार्जरहरू हजुरले जहाँ पनि पाउनुहुन्छ चाहे हजुर इन्डियामा ट्राभल गर्दै हुन्छ चाइनातिर ट्राभल गर्दै हुन्छ जहाँ पनि आफ्नो गाडी लिएर म कम्फर्टेबल जान पाउँछु भन्ने पनि पाउँछ हजुर
1: त्यसका लागि सरकारले अलिकति यो चार्जिङको समस्या त्यसै गरी ब्याट्रीमा पनि अलिकति अझै मोडिफाई भएर आउनुपर्छ भन्ने पनि माग उठ्छ बेला बेलामा कति समस्या छ भनिन्छ अथवा महँगो पर्छ भन्ने चाहिँ यसका लागि के भन्नुहुन्छ
4: अब त्यो सरकारको चाहिँ सरकारले चाहिँ यस्तो कुरामा चाहिँ ध्यान दिनै पर्छ किनभने हजुरको फ्युचर भनेको अब इलेक्ट्रिक होइन अब त्यो हाम्रो कुरा देखि पनि रहेछौँ र देखि पनि सकेको कुराहरू त्यही हुनाले अब सरकारले अलि यो कुरामा ध्यान दिएपछि उपभोक्ताहरूलाई चाहिँ धेरै सजिलो हुन्छ कि
1: त्यो विद्युतीय गाडीभित्र पनि ग्राहकको विशेष चासो त्यसभित्र के विषयमा बढी सोधपुछ हुनुपर्छ रहेछ उहाँहरूबाट
4: त्यो उहाँहरूको चाहिँ धेरै जस्तो किलोमिटर कति किलोमिटर पुग्छ र अनि पैसा त्यो कति कति कति मूल्यको छ त्यही नै छ
1: चासो हस् त्यहाँलाई धन्यवाद कुराकानी गर्दा
4: थ्याङ्क यू सर
1: हामीले नाइमा मोबिलिटी एक्सपो 2026 अन्तर्गत इको कम्पनीको स्टलमा आइपुगेका छौँ म उहाँको परिचयबाट सुरु गर्छु सरको शुभ नाम
5: मेरो शुभ नाम नितेश रासिङ यसको बारे पनि अलिकति तपाईँको म चाहिँ न्यू स्कुटरको मार्केटिङ म्यानेजर हो हामी अहिले नाइमामा प्रस्तुत छौँ 2026 नाइमामा हामी स्टलमा आइदिनुहोस् होला हाम्रो स्कुटर हो मेन फोकस र जसरी टु विलर्स भनौँ न स्कुटर भन्दा पनि टु विलर्स ब्रान्ड हो हामी अब टु विलर्स ब्रान्डमा हामी स्कुटर हो स्पोर्ट बाइक भनौँ हो तपाईँको रोड रेसर बाइक भनौँ अन्त हामी त्यो प्रोडक्ट
1: पछिल्लो समय ग्राहकहरूको अलिकति यो विद्युतीय गाडीतर्फ पनि आकर्षण बढ्दो छ के पाउनु भएको छ तपाईँको अनुभव के छ हिजोदेखि एक्सपो सुरु भएको छ आजसम्मको अवस्था के छ
5: पहिलाको मार्केट अनुसार र पहिलाको जुन हाम्रो जनताहरूको जुन एउटा मेन्टल ब्लक थियो नि त्यो चाहिँ ओपन भएको छ सर रिसेन्टली जुन एउटा पेट्रोल सर्टेजले गरेर ओपन भएर उहाँहरू चाहिँ एडप्टेसनमा इलेक्ट्रिक बाइक इलेक्ट्रिक स्कुटरको एडप्टेसनमा एकदम बढ्दो देखिरहेको छौँ सर हामीले यस्तै भइराख्यो भने छिटै नेपाल पनि एउटा राम्रो गाडी जस्तै स्कुटर र बाइकमा पनि छिटो एडप्टेसन गर्ने कम्पनी चाहिँ हुनसक्छ
1: यो इन्धनबाट चल्ने पेट्रोल र विद्युतीय बाइक चढ्दाखेरि अथवा मोटरसाइकल चढिराख्दाखेरि दुई पानले के फरक छ यसमा चाहिँ
5: सर सेभिङ तपाईँको पैसा धेरै सेभ हुन्छ नि सर तपाईँले मान्नुहोस् तपाईँको होइन तपाईँले बाइक चलाउनुहुन्छ मान्नुहोस् होइन तपाईँ पेट्रोलको हो तपाईँले 5,000 रुपियाँ तिर्नुहुन्छ महिनाको त्यो तपाईँले 4 वर्षको हिसाब गर्नुभयो भने तपाईँले 3-4 लाखको तपाईँले पेट्रोल खोज्नुहुन्छ सर है त्यही कुरा तपाईँले इभी चलाइराख्नु भएको भने यो म्याक्सिमम 20,000 रुपियाँ 30,000 खर्च गरेर तपाईँको बिजुलीको हो तपाईँको अलमोस्ट लाइक 3-4 लाखको त यहाँ तपाईँको पैसा सेभ हुन्छ त्यो त हुँदैन अब तपाईँले जुन कुरा तपाईँले पेट्रोल बाइक चलाएर पाइराख्नु भएको छ नि त्यही सुविधाको तपाईँले इभी गरेर उठाउनु हुन्छ नि त्यो कुरा त्यही हो सर
1: अब के छ जस्तो विद्युतीय गाडी खरिदका लागि बैङ्किङ सुविधा फाइनान्सको यस सन्दर्भमा के छ जानकारी
5: हो सर मजाले तपाईँले आइसी मोटर जस्तै जस्तै पाउनुहुन्छ नि फाइनेन्स त्यस्तै हाम्रो इन्डियामा पनि मजाले पर्छ हाम्रो शाखा छ ब्याङ्किङमा पनि हाम्रो एनआरबी ब्याङ्कहरू हुनुहुन्छ होइन एनआरबी ब्याङ्क हुन्छ अरू ब्याङ्कहरू पनि हुन्छ हाम्रो पार्टनरहरू त्यहाँबाट पनि तपाईँले फाइनेन्स सुविधा लिन सक्नुहुन्छ शाखा फाइनेन्स हाम्रो फाइनेन्स पार्टनर नै हो उहाँबाट पनि तपाईँले फाइनेन्सको सुविधा लिन सक्नुहुन्छ
1: अधिकतम न्यूनतम सबैभन्दा कम मूल्य र सबैभन्दा बढी के फरक छ
5: हाम्रो सबभन्दा कम मूल्य 2,25,000 बाइक हो एचएक्सबी र सबभन्दा बढी मूल्य HX300 भन्ने जो चाहिँ तपाईँको 3,80,000 पर्छ हो अब तपाईँले डिफ्रेन्स डिफ्रेन्स हेर्नुहुन्छ भने एउटा रेन्जको डिफ्रेन्स छ, एउटा 100 किलोमिटर हो भने अर्को 150 किलोमिटर छ, अरू भनेको स्पेक्सहरू फेसिलिटिजहरू अझै तपाईँलाई अलिकता पैसा तिर्नुहुन्छ भने अझ धेरै फेसिलिटिजहरू पाउनुहुन्छ बाइक बाइकको सन्दर्भमा। अझ ब्याट्री ब्याक पर्छ सर, अहिले 235 चाहिँ तपाईँको ग्राफिनाइट ब्याट्री हो भने जो 385 चाहिँ जो डिमान्ड ब्याट्री हो त्यो ब्याट्रीको क्वालिटीमा पनि डिफ्रेन्स हुन्छ, वारेन्टीमा डिफ्रेन्स हुन्छ, त्यो अलिकता फरक छ। त्यो बाइक धेरै भन्दा अरू खासै फरक के पनि छैन, मोटर पनि मोटर पावरहरू पनि काइन्ड अफ सेमै छ, त्यो डिजाइन पनि सेमै छ, हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। त्यो त्यस्तो फरक भन्ने एउटा हाम्रो ब्याट्रीमा होइन वारेन्टीमा ब्याट्री वारेन्टीमा बेसिकली यति नै फरक हुन्छ। अनि रेन्जमा अहिले कति जति ग्राहकहरू अवलोकन गर्न आइरहनु भएको छ बुझ्न, त्यो चाहिँ 200-300 मान्छेहरू आइरहनु भएको छ, मजाले आइरहनु भएको छ 200-300 मान्छेहरू। हस् त्यहाँलाई धन्यवाद समय कुराकानीको लागि।
6: तपाईँ अहिले उज्यालो रेडियो नेटवर्कमा कार्यक्रम बदलिदो नेपाल सुनिरहनु भएको छ। यो कार्यक्रम काठमाडौँमा 90 मेगाहर्जसँगै देशभरिका विभिन्न रेडियो स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। आज हामी कार्यक्रममा नाइमा मोबिलिटी एक्सपो 2026 विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गरिरहेका छौं। कार्यक्रममा नेपाल अटोमोबाइल आयातकर्ता तथा निर्माता संघ अर्थात नेपाल अटोमोबाइल इम्पोर्टर्स तथा म्यानुफ्याक्चरर एसोसिएशन नाइमाका कार्यकारी निर्देशक राजकुमार दुलालसँगको कुराकानी बाँकी नै छ, उज्यालो सुन्दै गर्नुहोला।
7: आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालय काठमाडौँमा पारस, फिस्टुला, फिसर लगायतका रोगहरूको दैनिक विशेषज्ञद्वारा परीक्षण, परामर्श तथा शल्यक्रिया सेवा उपलब्ध भइरहेको छ।
8: विशेषज्ञ सेवाहरू, निशुल्क शल्यक्रिया सेवा, अनुभवी आयुर्वेदिक शल्य चिकित्सकद्वारा उपचार, छाल सूत्र लगायत आधुनिक तथा आयुर्वेदिक उपचार पद्धतिको सुविधा, दैनिक ओपिडी तथा शल्यक्रिया सेवा,
7: रोग लुकाएर नराखौं, समयमै परीक्षण गरौं।
8: थप जानकारीका लागि आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालय काठमाडौँ, फोन 01-4110-6690, 41-10-6690।
9: स्वस्थ जीवनका लागि

0: उज्जवल एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागी हाम्रो अभियान
1: टाइम
2: चेक को साथ में तथा ज्वालामाई अफसेट प्रेस सोलुदुपु नगरपालिका 5 सोलुखुम्बु

सोलुक खुम्बु कानून के अंतर्गत एनएलबी में भर्ना संबंधी एक सोलुक खुम्बु कानून कैंपस में शैक्षिक सत्र 2083/84 को लगी 3 वर्षीय एनएलबी प्रथम वर्ष को भर्ना खुले हुआ कुछ विषय में स्नातक तह उत्तीर्ण कर इच्छुक व्यक्ति निम्न अनुसार भर्ना होने जानकारी कराइन भर्ना कार्यक्रम को मिति भर्ना का लगी आवेदन फारम वितरण भदौ 1 गते देखि भदौ 30 गते सम्म प्रवेश परीक्षा असोज 10 गते नतीजा प्रकाशन असोज 11 गते भर्ना म्याथ असोज 12 गते देखि असोज 25 गते सम्म कक्षा संचालन कार्तिक 10 गते देखि रजिस्ट्रेशन फारम भर्ने म्याथ कार्तिक 30 गते सम्म सब जानकारी का 98-51-01-05-56 98-41-28-45-45 र 98-42-84-87-75 गीता घिमिरे कैंपस प्रमुख।

0: check. City FM, the studio time.
1: It's 1 p.m. दिवसको एक बजे
2: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामय अफसेट प्रेस सोलुदूत नगर पालिका पांच सोलुखुम्बु
1: आदरणीय श्रोताबृन्द तपाई अहिले सुनिरहनु भएको छ सुन्न एफएम सुन्न एफएममा अब तपाईले सुन्न सक्नुहुन्छ विभिन्न

0: नेपाल में सर्वाधिक बिक्री हुई अंतर्राष्ट्रीय होंडा ब्रांड को मोटरसाइकिल तथा स्कूटर अब ओखलढुंगा को मिलन चेतना
1: होंडा का विशेषता
2: जापानीज उच्च प्रहरी उत्पादित
1: उत्कृष्ट माइलेज
2: राम्रो रिसेल मूल्य
1: टिकाऊ र भरपर्दो
2: अफ रोड का लागि पनि उपयुक्त
1: BS6 तथा नया नया भर्सन बजार में लॉन्च भइरहेको
2: सब उमेर समूह कर्मचारी तथा व्यवसाय प्रयोजन का लागि पनि अति उपयोगी
1: हाम्रा सेवाहरू
2: ओखलढुंगा र खोटाङ को डिक्टल बजार बाटै फाइनेंस को सुविधा सहित होंडा का सब मॉडल का मोटरसाइकिल तथा स्कूटर कंपनी के मूल्य में पाइने
1: जुनसुकी मॉडल का जेन्युइन पार्ट्स पाल्नु का साथै सर्भिसिङ सेवा
2: एक्सपेन्स गो सुविधा सहित मोटरसाइकिल तथा स्कूटर खरीद गर्दा एक सेट हेलमेट र सर्भिस सेवा निशुल्क दिइने
1: अनलाइन बाट बुकिङ गरी भुक्तानी गरेमा होम डेलिभरी को सुविधा समेत रहनेछ
2: ओखलढुंगा को लागि आधिकारिक विक्रेता होप मल्टीपर्पज सर्भिस प्राली सिद्धिचरण नगरपालिका 11 गुरुमारी भुजान ओखलढुंगा
1: सम्पर्क नम्बर 037590222 9852888022 र 9842080300

0: प्रोलु एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
1: स्टूडियो टाइम
2: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामय ऑफसेट प्रेस सोलु दुतकुंडा नगर पालिका 5 सोलु खुम्बू।

0: Cas Caldemar, grup de vegades. सार्वजनिक हित का लागि उज्यालो को अनुरोध अब इंटरनेट ढिलो हुन छिटो स्मार्ट र सुरक्षित इंट्रोड्यूसिंग वाईफाई 6 विथ सुविस्तु सुरक्षा
1: वाईफाई 6 सँग पाउनुहोस् हाई स्पीड र स्टेबल इंटरनेट
0: साथै सुविस्तु सुरक्षाले तपाईंलाई राख्छ अनलाइन ब्राउजिङमा सुरक्षित
1: हानिकारक साइट असुरक्षित कन्टेन्ट अनि सबै इन्स्टेन्ट ब्लक हुन्छ
0: सुविस्तु छिटो पनि सुरक्षित पनि थप जानकारी तथा बुकिङका लागि
2: राप्ती इंजीनियरिंग कॉलेज घोराही दांग को विद्यार्थी भर्ना संबंधी सूचना
3: स्थापना को पहले बैच में इंजीनियरिंग कार्यक्रम तर्फ पोखरा विश्वविद्यालय प्रथम तथा बीसीए तर्फ पांचों बैच में गोल्ड मेडल प्राप्त करना सफल ग्रीनरीज विश्वविद्यालय लंदन कॉलेज रीडर्स नेपाल द्वारा सम्मानित नेपाल एजुकेशन अवार्ड जापान ऑस्ट्रेलिया तथा यूएई द्वारा पुरस्कृत लुम्बिनी प्रदेश के उत्कृष्ट इस कॉलेज में बीबीए बीसीए बीई कंप्यूटर र बीई सिविल कार्यक्रम में केही सीट खाली रहेकाले इच्छुक विद्यार्थीहरूले तुरंत
2: संपर्क गर्नुहोला राप्ती इंजीनियरिंग कॉलेज घोराही दांग
3: फोन नंबर 082-562-601 98578-3590 98578-3584 तीन वर्षे डिप्लोमा इन कम्प्यूटर इंजीनियरिंग र 18 महीने अमिन कार्यक्रम में केही सीट खाली रहेकाले इच्छुक विद्यार्थीले छिटो संपर्क गर्नुहोला

0: ঘোড়া ধুম ধুম সড়ক সীমা অতিক্রমণ না করুন, সড়ক সীমামা অস্থায়ী এবং স্থায়ী সমুখীন নির্মাণ না করুন, সড়কটি নামে ফল তথা পানি বিকাশ বন্ধ হল না দিন, সবারই চলাও বা লেন অনুসার পালনা করুন, গড়ান সবারই চলাও বা ট্রাফিক নিয়ম কু পালনা করুন, সবারই সাধুমা ঘুমিয়ে রসমা বসে যাত্রা না করুন, সড়কের ক্ষমতা ভন্ডা বড়ি ভাগ প্রয়োগ না করুন, জেব্রা ক্রসিং বাট মাতৃ বাটো কাটনি করুন, সড়ককে তৎকাল মজবুতি মার্গ গড়ি করুন, যাত্রাকে ক্রমা কোন সমস্যা ভয়ে নৌকিক প্রহরী খবর করুন।
1: আন্তরিক মামিলা তথা কানুন মন্ত্রালয় কুর্তি প্রদেশ দ্বারা জনহিত মা জারি
2: সন্দেহ।
1: स्वास्थ्य कार्यालय को जनहित में जारी संदेश।
3: पोषण युक्त खाने कुरा जीवन का रंग पूरा मन माता की तन्मा।
1: स्वास्थ्य जीवन को आधार हो संतुलित र पोषण युक्त आहार, विशेष करी गर्भवती महिला, सुत्केरी आमा र पांच वर्ष मुनि का बाल बालिकाहरूलाई पोषणयुक्त खाना को विशेष आवश्यकता पर्दछ। दैनिक खाना में दाल भात, हरियो तरकारी, फल फूल, दूध तथा अन्य पोषणयुक्त खानेकुरा समावेश करौ। जन्मेको एक घण्टा भित्र शिशुलाई स्तनपान गराउ। छ महिनासम्म शिशुलाई आमाको दूध मात्र खुवाउ। छ महिनापछि स्तनपान सँगै उमेर अनुसारको पूरक खानेकुराहरू शुरू गरौ। आइरन, भिटामिन ए र जिंक युक्त खानेकुरा नियमित सेवन गरौ। जंक फूड, धेरै नुन र अस्वस्थकर खानाबाट टाढा रहौ। कुपोषणले बालबालिकाको शारीरिक तथा मानसिक विकासमा नकारात्मक असर पार्ने गर्छ, त्यसैले हामी सबै मिलेर पोषणयुक्त समाजको निर्माण गरौं। जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय

0: नागरिक सहायता कक्ष संचालन होने संबंधी सूचना अदली सेवा ग्रहण महानुभाव यातायात व्यवस्था कार्यालय प्रभावी सेवा प्राप्ति को सहजीकरण को नागरिक सहायता कक्ष संचालन कर उक्त कक्ष निःशुल्क सेवा प्राप्त कर सकने सेवा प्राप्ति को नागरिक सहायता कक्ष में संपर्क राख्न अनुरोध सेवा प्राप्ति में कति को प्रलोभन नगरी आपको सेवा लिना हार्दिक अपील करद सेवा प्राप्ति में कई घास राशो सुने अधिकार कार्यालय प्रमुख सोझी संपर्क राख्न सकने
1: कोशी प्रदेश सरकार आंतरिक मामला तथा कानून मंत्रालय विराटनगर
0: आर्थिक वर्ष 2084-84 का लगी प्रदेश संचालन कर आयोजना कार्यक्रम को लगी प्रस्ताव आवेदन संबंध में कोशी प्रदेश योजना आयोग को सूचना
2: आयोजना को वर्गीकरण आधार तथा मापदंड निर्धारण र आयोजना वन व्यवस्थापन कार्यविधि 2082 विभूति स्थानीय तह प्रदेश कार्यालय आर्थिक वर्ष 2084-84 में कार्यान्वयन होने आयोजना कार्यक्रम के संबंध में इस आयोग नीति 2082 साल चैत्र 9 गति आयोजना वन सूचना प्रणाली मार्फत प्रस्ताव आह्वान भएको हुनाले 2083 साल वैशाख 25 गति भित्र प्रणाली को प्रयोग मार्फत आयोजना प्रस्ताव बना हुआ कोशी प्रदेश सरकार मार्फतका कार्यालय र स्थानीय तहहरूलाई जानकारीको लागि यो सूचना प्रसारण गरिएको छ। साथ ही आयोजना प्रस्ताव सम्बन्धमा स्थानीय नागरिकले सम्बन्धित स्थानीय तह र संस्थाको कार्यसित रहेको स्थानीय तह तथा आयोजनाको सम्बन्ध कार्यक्षेत्रमा रहेको प्रदेश कार्यालयमा सम्पर्क राख्न अनुरोध गरिन्छ। प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी सूचना विस्तृत आयोगको वेबसाइट ppc.cc.gov.np हेर्न पुनः सबैमा यसै सूचना मार्फत अनुरोध गरिन्छ।
1: प्रदेश सरकार प्रदेश योजना आयोग विराट